0: ना जाए।
1: इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। जाते जाते एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, उसके बाद सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। और ठीक 9:10 पर म्यूजिकल दिल्लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा नीतू के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के

0: मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जलशोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि विगत 25 वर्षों में श्री मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति और नई दिशा प्रदान की है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की है। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2026 एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today, marking Prime Minister Narendra Modi's birthday and celebrate his completion of 25 years of public service. The program will be launched from his hometown Vadnagar in Gujarat. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally. A report.
3: A series of welfare programs will be held at PM's birthplace in Vadnagar today on the occasion of his birthday and 25 years of his public service. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will participate in a grand Mahaarti at the historic Shamishta Lake, where sacred water will be collected in a kalash and handed over to bikers travelling to Varanasi. The dignitaries will lead a foot march from the lake to Hatkeshwar Temple to offer prayers, followed by flagging off a rally of 250 bikers heading to Varanasi to spread the message of public service. Home Minister and Chief Minister will also lead a cleanliness drive at Vadnagar Railway Station today. Aparna Khun.

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। और जब हम बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं ना, या बहुत दिनों बाद किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो फिर हमें अच्छा लगता है जो अच्छी सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसा लगता है कि बस ऐसी सिचुएशंस बार बार आए, और थोड़ा सा अचंभा भी होता है ना, पर ऐसी हैरानी हम सबको पसंद है। म्यूजिकल दिल लगी में और भी बातें होंगी, लेकिन इस गाने के बाद।

आज है 17 सितंबर और आज हम मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा, जो कि भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। और आप जानते ही हैं कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। और इस दिन कारखानों, कार्यस्थलों, औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है। ये दिन कौशल और मेहनत को सम्मान देने का दिन है। देश की पारंपरिक कला और कौशल को संरक्षित करने के साथ साथ कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही एक और महत्वपूर्ण कदम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत कारीगरों को फ्री ट्रेनिंग, आधुनिक टूलकिट, सर्टिफिकेट्स और सस्ती दरों पर लोन की सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित और मार्केट से जोड़ने में भी मदद की जाती है, ताकि उनका काम बढ़े और आय में सुधार हो।

0: इन दिनों हम मना रहे हैं गणेश उत्सव और गणेश जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मोदक। तो अब हम एक ऐसी महिला से बात करते हैं जो कि बनाती है मोदक। उनका नाम है रसिका कांबरी। रसिका जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम,
0: कैसी हैं आप?
1: मस्त, फर्स्ट क्लास।
0: और मोदक कैसे बन रहे हैं?
1: बन रहे, अभी काम चालू है।
0: काम चालू है
1: ऑर्डर का।
0: अच्छा, तो आपके बड़े स्पेशल मोदक हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कब से बना रही हैं आप मोदक और क्या स्पेशल है इन मोदकों में?
1: मैडम, हम 2025 में जब दिल्ली में आए थे ना, जो महाराष्ट्र सदन में,
0: अच्छा,
1: जो हमने उस दिन बनाया, दिल से, इतने दिल से बनाया ना, सब दिल्ली के लोगों को इतना अच्छा लगा, हमारे ऑर्डर हमको पूरा करने के लिए टाइम नहीं था।
0: अच्छा रसिका जी, थोड़ा सा ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पीछे का शोर जरा कम हो, पीछे की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, आप सही।
1: हाँ जी, बोलिए मैम।
0: हाँ, अब बताइए, तो मोदक, लेकिन आप जब दिल्ली आई उससे पहले भी तो आप बनाई रही होंगी ना मोदक, तभी तो आपको दिल्ली आने का मौका मिला होगा।
1: मैम, मैं 2025 में महालक्ष्मी सरस जो रहता है बांद्रा में, वहाँ स्टॉल पे गई थी।

0: तो तभी जो हमारी मैम है आर बिमला मैम, उधर सीओ उमेद अभियान में सीओ थी.
1: अच्छा.
0: तो हमारा कांटेक्ट रहा था मुझे उमेद में. तभी उमेद ऑफिस में हमारी मैम ने कांटेक्ट किया कि ऐसे मोदक का स्टॉल लगाना है सदन में, आ जाएंगे क्या आप. तो हम बोले मैम हमने कभी मोदक ज्यादा करके इतना क्वांटिटी में बनाया नहीं था,
1: घर में
0: हम लोग भगवान के भोग के लिए बनाते हैं.
1: अच्छा ओके. हाँ
0: तो मैम बोले आप आइए तो सही. तो मैम बोले सिर्फ मोदक ही बनाने का है. हाँ मोदक में इतना ये होएगा क्या, सेल होएगा, हमने मैम से पूछा. मैम बोले आप आइए आप देखिए दिल्ली वालों की क्या टेस्ट है क्या नहीं. तो हम लोग आ गए दो दिन में. मैम ने हमारे टिकट कट कराया, हम लोग आ गए दिल्ली में. जब पहले दिन इतना ऑर्डर आया मैम, बाप रे, हमारी तो दो ही लेडीज आई थी, हम लोग दो ही जो हमारे मेरी जो पार्टनर है सुजाता जादव करके, हाँ हम दो ही लेडीज आई थी. और इतना कलबली मचा, इतना ऑर्डर आया कि हम लोग तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं रही.
1: तो बप्पा की कृपा हो गई आप पर, है ना?
0: बहुत बप्पा की कृपा हो गई. चार बजे तक मैम ने देखा हमने खाना नहीं खाया, तो हमने हमारे मैम ने इतना मेरे को डांटा, आप लोग उठिए पहले वो काउंटर बंद कीजिए और खाना खाइए. सुबह से 3 बजे से लगे थे हम लोग उस दिन.
1: अरे वाह. अच्छा मोदक बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा, अगर हम थोड़ा सा 1 किलो के हिसाब से बताइए कितना टाइम.
0: 1 किलो के हिसाब से मैडम हम लोग क्या करते हैं, अभी 4-5 किलो का एक पार में फिर आटा रहता है ना इतना चावल का, वो बना लेते. अच्छा. उसके हिसाब से हम लोग एक घंटे में 100 तो बनाए थे होंगे हम.
1: अच्छा.
0: हाँ 1 घंटे में 100 बनाते. अभी स्पीड बढ़ा है मैम हमारा.
1: अच्छा,
0: पहले जब आए थे स्टार्टिंग में तभी हमारा स्पीड कम था, अभी आदत हो गई है. अभी हर जगह स्टॉल पे जाते हैं ना उधर मोदक ही बनाते हैं अभी.
1: अच्छा, तो आपके मोदक फेमस हुआ है. मोदक कितने फेमस हो चुके हैं.
0: हाँ दिल्ली में हम किधर भी आएंगे ना फिर भी मोदक ही जाता है हमारा ज्यादा करके.
1: तो सिर्फ उत्सव के दौरान बनाती है, फेस्टिवल्स के दौरान ही बनाती है, वैसे भी बनाती है.
0: वैसे भी बनाते हैं मैम हम.
1: अच्छा.
0: वैसे भी बनाते हैं. जब भी इधर सरस रहता है, आजीविका मेला रहता है, उधर भी हम मोदक बनाते हैं.
1: चलिए तो ठीक है. हाँ. बप्पा ने आप पर कृपा बरसाई है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. इसी तरह आप मोदक बनाती रहिए और जब दिल्ली आए ना तो हम भी आपके मोदक दोबारा चखेंगे.
0: भाई आप अभी तो हम दिल्ली में है, दिल्ली. अच्छा. का महाराजा जो गणेश सेवा मंडल में दिल्ली लक्ष्मी नगर में जो है पंडाल, उधर ही हम लोग है मैम. आप जरूर आइए, हमें
1: बिल्कुल
0: हमारा मोदक टेस्ट करके जाइए.
1: हाँ बिल्कुल टेस्ट करेंगे आपके मोदक.
0: और दिल्ली वालों को ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारा लक्ष्मी नगर में जो स्टॉल लगा है उधर आके हमारा मोदक का स्वाद लीजिए.
1: बिल्कुल,
0: जो हम दिल से बनाते हैं.
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपके दिल से बनाती है इसीलिए तो स्पेशल है. तो इसी स्पेशल मोदक जिन्हें पसंद है उन्हीं को याद करते हैं आपके साथ. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच मैम. बाय.

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में

0: या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
1: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
2: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी और आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर को बहुत ही कुछ होता है, लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये दिन बहुत जरूरी दिन है क्योंकि हम सब ना किसी स्वास्थ्य की समस्या से परेशान रहते ही हैं, और ऐसे में हम मरीजों की सुरक्षा जो है वो बहुत बहुत मैटर करती है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मरीजों की सुरक्षा का महत्व जो है वो बढ़े, उसके प्रति जागरूकता बढ़े, इलाज में होने वाली गलतियों और जोखिमों को कम करके सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए। ये दिन मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर देता है। और मैं क्या, हर किसी का मानना यही है कि बेटर तो यही है कि हम बीमार पड़े ही ना, तो उसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी है हंसना हंसाना, और खास तौर पर अगर फेफड़ों के मरीज हैं।

कि बेटर तो यही है कि हम बीमार पड़े ही ना, तो उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है हंसना हंसाना, और खास तौर पर अगर फेफड़ों के मरीज हैं आप तो उनके लिए तो हंसना और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बहुत तेज हंसी या कहकहा नहीं, बल्कि लाफ्टर थेरेपी। अगर आपने 2 महीने सही तरीके से लाफ्टर थेरेपी ले ली तो ऐसा कहा जाता है कि सांस लेने में होने वाली तकलीफ से काफी हद तक राहत मिल सकती है। तो हंसिए, हंसाइए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है खुश रहिए, खुश रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियां ना यूं ही गायब हो जाएंगी।

आप नहीं भी सीखेंगे ना, जिंदगी आपको ऐसा सब कुछ सिखा देगी। तो टेंशन की बात नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी खबरें सुनते हैं कुछ, जब हमारे आसपास इतनी नेगेटिव चीजें चल रही हों, इतनी नेगेटिव खबरें चल रही हों, ऐसे में कुछ अच्छी खबर अगर सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा सा लगता है, दिल खुश हो जाता है। तो मैं भी आपका दिल खुश करने की कोशिश कर रही हूं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्टील कारखाने से औद्योगिक कचरा निकलता है और उस कचरे का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनाई गई है। माना जाता है कि ऐसी सड़कें जो हैं वो पारंपरिक सड़कों की तुलना में कम लागत में बन जाती हैं और ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं, और उससे भी बढ़कर जो कचरे का है वो निपटारा हो जाता है, जो आजकल बढ़ती हुई समस्या है। तो फिर ऐसी ही और भी सड़कें बननी चाहिए ना। चलिए, वो तो जब बनेंगी तब बनेंगी, फिलहाल तो गाना सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गाना है ये, और आज ऐसा लग रहा है कि बिना किसी प्लानिंग के किशोर दा जो हैं वो हमारी टॉप लिस्ट में आ गए हैं।

0: लीजिए, जेन जी के नाम एक और कारनामा हो गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि ये पीढ़ी नहाने में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करती है। हालांकि ये जरा बहस का विषय है कि नहाने के लिए कितना वक्त और कितने पानी की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ 5 मिनट में बाहर आ जाते हैं और कुछ होते हैं इनकी तरह जो कि बाथरूम में ही गाना बजाना शुरू कर देते हैं।
1: ठंडे पानी से

बिल्कुल ऐसे ही गाते रहिए, गाना आए या ना आए, बस दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिएगा और खुद गाने गाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। म्यूजिकल दिल लगी का सफर यहीं तक है, नीतू को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे तीन दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जलशोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए और समावेशी विकास को गति दी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति

0: इतिहास सुजा।
1: विश्वकर्मा जी कौन थे? आखिर क्यों मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि श्रद्धा का वो पावन सागर है जिसमें डूबकर हर श्रमिक अपने काम को पूजा समझने लगता है, हर कलाकार अपनी कला में दिव्यता पाता है और हर शिल्पकार अपने हुनर में भगवान का दर्शन करता है। ये कथा है उस महान देव की जो सृष्टि के आदि से ही इस संसार के कणकण में अपनी कलाकारी बिखेर रहे हैं, जिनके हाथों से निकला हर शिल्प जीवंत हो उठता है, जिनकी बनाई हर वस्तु में प्राण फूंक दिए जाते हैं। वो है भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जयंती का ये पावन पर्व सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि उस दिव्य शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव है जो हमारे जीवन में हर क्षण उपस्थित है। हमारे घरों से लेकर मंदिरों तक, हमारे औजारों से लेकर हथियारों तक, सब कुछ में विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद समाया हुआ है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा।
2: प्रेम से बोलिए

0: तो हमारे पास पैसा कमाने के चार रास्ते होते हैं।
1: सर पैसा क्या है?
0: देखिए पैसा जैसे हम सोचते
1: उसी तरीके से बना होता है, तो हम थोड़ा मतलब

गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सहरा से। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब की। आज हम उनकी 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आपको बता दें 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम इकबाल हुसैन था। 1940 के दशक में वे मुंबई आए थे और लगभग कई सालों तक उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की थी और उसके बाद उन्हें ब्रेक दिया था राज कपूर साहब ने। तो चलिए उनका लिखा एक और गीत, हसरत जयपुरी साहब का लिखा एक और गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। अब सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz।

जी हाँ, शमी कपूर और वैजंती माला पर पिक्चराइज्ड ये गीत, आवाज थी मोहम्मद रफी की और एक फिल्म थी प्रिंस। और जाहिर सी बात है, इस गीत को लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने। और आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब की। हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने राज कपूर की फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। बरसात के बाद हसरत जयपुरी ने राज कपूर की कई फिल्मों के गीत लिखे थे। पहली फिल्म के बाद हसरत की जोड़ी संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ बन गई थी। इनकी टीम ने कई फिल्मों के गीतों को यादगार बना दिया था। 1971 में जयकिशन के निधन के बाद

हसरत जयपुरी ने फिल्मों में कई रोमांटिक गीत लिखे। उन्हें प्रिंस ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। हसरत जयपुरी ने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए लगभग 2000 गीत लिखे। उन्होंने 2 बार फिल्म सूरज और अंदाज के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम किया।

मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104 एफएम मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 17 तारीख व दिन है गुरुवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत समूह, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री लाम सिरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गरी, मनपा में उद्घोषक श्री थूतन दाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली के अन्य चैनल प्रसारित मिड न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: मोदी की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की, सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
0: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5

0: अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क राबते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
1: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
0: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहां की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
3: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमरीकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुँचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
2: Draining the swamp that provided an
3: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है देवभक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आयार सुनते हैं नरेंद्र चंचल के स्वर में चंद देवभक्ति गीत।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय दोपहर के 3:00 हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत। कार्यक्रम प्रदेशी संगीत में आज आप सुनिए कुमार सानू की आवाज में चरणाधुनिक बंगला गीत।

0: श्रोताओं, इस आधुनिक बंगला गीत के साथ ही विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम में आयाज सुनते हैं गणमंगल हासे पीएलएफ के अंतर्गत वंगामा स्वयं सहायता समूह की पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों पर श्रीमती नवी डेमा अध्यक्ष तथा श्रीमती तेंजी नामो ट्रेजर के साथ हुए एक भेंटवार्ता। भेंट करता है तोरजी ड्रेमा।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित महिला मंच कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में जो अतिथि उपस्थित है हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि इन्होंने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आज से पहले भी कई बार हिस्सा ले चुके हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित हो या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संबंधित हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तवंग क्षेत्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप होंग अमा के प्रेसिडेंट श्रीमती नवबुद्रमा जी के बारे में। तो नवबुद्रमा जी, एक बार फिर आपका हमारे आकाशवाणी तवंग के स्टूडियो में मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी।
2: धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने पहले भी नवबुद्रमा जी के साथ इनके जो होंग अमा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तवंग क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, इस बारे में आपके समक्ष चर्चा किए थे, पर तब की बात थोड़ी सी अलग थी। अब जो है इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनमें बहुत सारे बदलाव इन्होंने लाए हैं, तो आज हम उसी से संबंधित इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी पीछे हम और एक बार चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो होंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसकी स्थापना कब हुई थी, इस बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में फिलहाल आपके साथ कितने सदस्य जुड़े हुए हैं।
2: जी, होंग अमा जो है हम लोग 8 मेंबर है इसमें, और ये 17 नवंबर 2020 में इसका स्थापना हुआ था, और 8 अमा तब भी था, 8 अमा आज भी है
1: जी,
2: और बहुत अच्छे

0: चल रहा है हमारा ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
1: जी। तो लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, है ना? तो
0: जी.
1: इन 5 सालों में आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वोंग आमा, जो कि मैंने पहले कहा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो अब तक की आपकी जो उपलब्धियां हैं इस बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन 5 सालों में आपने किस तरह के काम किए हैं।
0: सेल्फ हेल्प ग्रुप जब ये इसका स्थापना हुआ था तब हमें बताया गया कि इसमें आपको 3 महीने तक काम करके दिखाना होगा, तभी आपको इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसे बताया था। तो ये हम 8 आमा जब इसमें शामिल हुए तो हम लोगों ने पहले 3 महीने तो हम लोगों ने डट के काम किया, जिसमें जंगल में धूप को काटने से लेके उसको सुखाने से लेके उसको पैकेजिंग करने से लेके बिक्री करने तक के लेके बोमडिला तक जाने तक का जर्नी जो है काफी मेहनत भरी थी। और जंगल में जाके चाय पत्ती जो नमक चाय में बहुत स्वादिष्ट है उसको भी हम लोग ने जंगल से कलेक्ट किया, धोया, पैकेजिंग किया, उसको भी बिक्री किया। इसके अलावा हम लोग खपसे को बहुत, मेरा सपना ही था कि जैसे हम लोगों का बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, ऐसे ही मोम्पा का जो रेसिपी खपसे है
1: जी,
0: वो भी सबके घर पहुंचे, ऐसा सोच के मैंने इसी को आगे बढ़ाने के लिए खपसे को शुरुआत किया। तो शुरुआत में तो तकलीफ तो काफी थी, क्योंकि हम लोगों का बजट जो है हम लोग हफ्ते में लगभग 30 रुपए ही हम लोग जमा करते हैं।
1: अच्छा।
0: हफ्ते में तो 4 हफ्ता में 120 जमा होता है, 8 आमा के हर आमा जो है 120 रुपए उसमें कंपलसरी सेविंग के रूप में हम लोग जमा करते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे करते हम लोग के पास में कुछ 10,000 के करीब हम लोग कमाई हुआ। उसको हम लोग ने फिर अमालों को लोन दिया और लोन दे के उसमें से कुछ इंटरेस्ट आया, ऐसे करके इसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जो है हम जो अभी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम अभी हमने सब अमा अगर फंक्शन का
1: जी जी
0: ये धूप का व्यापार करेंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, ऐसा एक डर मन में लगा तो इसको छोड़ करके। और चाय पत्ती तो वैसे भी पतझड़ के टाइम में वो गिर जाती है तो उसको उठाने में तो उसमें कोई नुकसान नहीं, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं, तो उसको जारी रखा। और धूप को हमने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन खपसे को बहुत ज्यादा पैमाने पर बनाना शुरू किया। और लोसर के टाइम में उसको एक लोगों से डिमांड लेके, लोगों को जिसका घर में सुविधा नहीं होता है तो खपसे बनने से तो काफी साजो सामान चाहिए, मेहनत चाहिए और आदमी चाहिए, तो कोई कोई जितना भी गवर्नमेंट सर्विस करने वाला उनके पास में समय कम होता है, तो उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके हमने लोसर में काफी जो है इसके ऊपर में काम किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिला। तो अभी जो है हम लोगों का फोकस जो है सुंदर पैकेजिंग हो और अच्छा पैकेजिंग हो और लोगों तक साफ सफाई के साथ में लोगों के घर घर पहुंचे, इसके लिए कोशिश करती हूँ। और इसी कोशिश में हम लोगों को सही में कहा जाए तो मेहनत है, लेकिन पैसा कमाने का तभी मजा है जब मेहनत उसके साथ जुड़ा हुआ हो। और मेरा सपना है ईटानगर से लेकर दिल्ली तक इसका स्वाद पहुंचे।
1: जी जी, जैसे कि आपने कहा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप ओंगामा ने अब तक खपसे के कई सारे व्यापारी कर रखे हैं और आपको फायदे भी हुए हैं, तो फायदे होने भी चाहिए क्योंकि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करते हुए अपने हाथों से खपसे बनाते हैं, ऑर्गेनिक चाय पत्ती की व्यापारी करी है। और इस बीच मुझे ना आपकी एक बात बहुत ही खास लगी, जहाँ पर आपने कहा कि आप पहले धूप या संग की व्यापारी करते थे और अब आपने ये सोचते हुए उसमें रोक लगाई कि एक दिन ऐसा लोग करते रहेंगे तो जंगल खत्म होने लगेंगे, तो ये बात जो है आपने बिल्कुल सही सोचा, बहुत ही बेहतरीन सोच इसमें आपने लाए हैं, क्योंकि अगर जब आप धूप के लिए जंगल जाओगे तो आपने एक अच्छी खासी पेड़ की डाली काटनी है, तो उसमें ना कहीं से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकते हैं। और तो और सरकार हमें हर बार ये शिक्षा देती है कि हमें जितना ज्यादा हो सके वृक्षारोपण करनी चाहिए, है ना? और आपके खपसे की जो पैकेजिंग है वो हमें बहुत ही उसमें खासियत नजर आए। एक बात आपसे जानना चाहूंगी, जब आप खाने पीने के चीजें बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो साफ सुथरे की बात आते हैं जो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, और एक होते हैं खाने की योग्य कब तक रहते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से ख्याल रखते हैं, किस तरह से खोज करते हैं?
0: सबसे पहले तो ये देखा हम लोग ने, पहले तो एक सिंपल व्हाइट प्लास्टिक में हम लोग खपसे को पैकेजिंग भी मोमबत्ती में जला करके उसका जो सीलिंग होता था वो भी एक अच्छा सा नहीं होता था, तो वो एक दिखने में भी थोड़ा लोग आकर्षित नहीं होते थे, बहुत साधारण सी लगती थी। तो इसके ऊपर में हमने कहा कि इसके ऊपर में काम करना जरूरी है, अगर हमारा प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुँचाना

0: तो पैकेजिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: तब हमने, और लोगों को इसमें पूरा मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या चीज डाला गया है, किस क्वांटिटी में डाला गया है, इसे खाने से क्या फायदा होता है, और इसको कैसे खाया जा सकता है, और कितना समय तक खाया जा सकता है, कब बनाया है। जब तक लेवलिंग की तरफ में नहीं जाएंगे और पैकेजिंग एक आकर्षक नहीं होगा तो लोग इसको खरीदना भी पसंद नहीं करते। तो इसके ऊपर में हमने काम किया। तो अभी हम लोग ने लगभग अभी हम लोगों का एक साल हो रहा है जो हमने इस पैकेजिंग के ऊपर में ध्यान दिया, और साफ सफाई के मामले में तो हम लोग बहुत ही ध्यान देते हैं।

0: कार्यों का आप किस तरह से करना चाहते हैं? हाँ, करते हैं
1: ऐसा है, बुक कीपिंग हफ्ता हफ्ता में मीटिंग होता है, मीटिंग में सभी अम्मा को अपना कंपलसरी सेविंग को रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, और वो एक लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो महीने भर साल भर चलते रहेंगे आपका जितना साल, उसमें जो अमाउंट जमा होगा वो तो अलग ही है। बुक कीपिंग में इतना ट्रांसपेरेंसी है कि एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होगा। तीन बुक में, एक माइनस बुक में मेंशन होता है, एक बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन वाला में मेंटेन होता है, अगर लोन लेता है तो मेंटेन होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर पैसा आ गया आपने जमा किया तो एक पैसा भी इधर उधर जाने का कहीं भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हिसाब हर हफ्ता हिसाब होता है, हर हफ्ता उसको हम लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, जमा करते हैं, या हर हफ्ता भी ना कर पाए तो हम लोग महीने में करते हैं। इस तरह से जो भी आमदनी होता है वो बिल्कुल उसमें लिखा जाता है, कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ, वो सब सारा चीज जो है कैलकुलेट होता है, और सभी अम्मा को जब पैसा का मामला होता है सब में एक संदेह रहता है, तो इसमें अगर पैसे के मामले में सबके मन में ये संदेह खत्म करे तो ये ग्रुप बहुत अच्छा से बैठता है, ग्रुप कभी टूटने वाला नहीं होता है, तो ये विश्वास जो है बुक कीपर का बनता है कि बुक में जो भी लिखा जाता है, जो भी कार्यक्रम बनता है, सही सही से लोगों को मालूम होना चाहिए, रुपया कितना है मालूम होना चाहिए, बैंक में कितना है वो मालूम होना चाहिए। तो अभी हम लोग का जो वोंग अमा का, तो हम लोग जो है हमारे मेंबर के अंदर में तो किसी को डाउट नहीं है कि इसमें एक पैसा भी इधर उधर होता है, या कुछ भी काम करते हैं हम लोग ग्रुप में, कुछ भी काम करते तो एक पैसा भी इधर से उधर होता होगा, ऐसा सब में एक विश्वास है कि हिसाब किताब बहुत बढ़िया होता है, एक पैसा भी गड़बड़ नहीं होता है, बल्कि ऐसा विश्वास सभी में है। हम भी, कोई दूसरा करता है तो उसको भी हम पर विश्वास है और हम पर भी लोगों का विश्वास है, तो ये विश्वास बन जाने के बाद में, बुक कीपर का ये विश्वास बन जाने के बाद कोई भी काम को हम लोग शुरू करने के लिए कहें तो सब लोग राजी होता है, और राजी होकर, और ये चीज जो है बुक कीपर ही कर सकता है, बुक कीपर को ही सब लोगों को समझाना होता है, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना बचा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंसी अगर ग्रुप में रहता है तो ग्रुप टूटने का सवाल नहीं है, और जो भी काम कदम उठाएगा उसमें सक्सेस होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोग जब शुरू में, तो हम लोग के पास में आमदनी क्या था, कुछ भी नहीं था, हमने संग बिक्री किया, थोड़ा जायपति बिक्री किया, थोड़ा खपचे बिक्री किया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग, जब हमारे पास में 10,000 आया तो हमने 10,000 अमालों को लोन दिया, 20,000 आया तो 20,000 अमालों को जो जिसको जरूरत है उसको लोन दिया, ऐसे करते करते अब भी हम लोग का जो हम इस पोजिशन में है कि हम लोग हम अपने ग्रुप से हम लोग 2,00,000 तक हम अपने अम्मा को हेल्प कर सकते हैं जिसको जरूरत पड़े, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप में रह के ये संभव है, अकेला ये कभी भी संभव नहीं है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहने से ये संभव है, तो इतना हेल्प हम अगर अचानक हमको जरूरत पड़े किसी से, कहीं तबीयत खराब हो गया या कभी जरूरत पड़ गया, अचानक जरूरत पड़ गया, जरूरत तो सभी को पड़ता है, कभी कभी इस तरह का जब मुसीबत आता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है जो आपको हेल्प करेगा,
0: तब
1: तो
0: सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही मतलब है, महत्व है
1: उसका, महत्व तभी मालूम होता है कि हम अगर किसी के पास मांगने जाओ तो शर्म लगता है, बोलने नहीं सकता है, किसी के पास मांगने जाओ तो दरवाजा तक पहुंच के झिझक रहता है, एक शर्मिंदा महसूस होता है, देगा कि नहीं देगा, देने से भी क्या बोल के देगा, इस तरह के बहुत सारा, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा नहीं है, जिसको आपको पूछा जाता है हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, किसको जरूरत है, जरूरतमंद वालों को ले सकता है एक पर्सन में बहुत कम इंटरेस्ट में, तो अगर वो इंटरेस्ट लोन लेता है तो ग्रुप में भी एक दो पैसा इंटरेस्ट आ जाता है, तो बहुत ही हेल्पफुल है ये जो है, और हमको इतना बताते हुए खुशी है कि मेरा वोंग आमा जो है 2,00,000 तक हम अपना ग्रुप को लोन दे सकता है, ये अमाउंट एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। गवर्नमेंट तो हमको हर समय तैयार है, बैंक में जाएंगे आपको सबसे पहले 4,00,000 या 5,00,000 आप बोलेंगे बिना कुछ किए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को तुरंत आपको एमसीपी बना के देने के बाद में आप एक उसको क्या किसमें खर्चा करेंगे वो एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट बना के देने के बाद गवर्नमेंट आपको कोई भी बैंक आपको देने के लिए तैयार है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहने से तो ये फायदा है।
0: जी, जी,
1: अगर आपको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है, आपको महीने भर दौड़ते रहिए, आपको वो मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये एक सुविधा बैंक वाला हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते दे रहे हैं, तो इसका भी फायदा उठाना चाहिए। अमलों का ये मान

0: है कि लोन में नहीं डूबेंगे, तो लोन से डूबने वाला नहीं, लोन लेके आपको काम करना है, काम से पैसा कमाना है, ये एक सोच रख के करना है। तो काम करने का भी एक मजा है, एक चिंता रहता है कि हमने लोन लिया है इसको जैसे भी हमको लौटाना है, ये एक चिंता रहता है। तो उस चिंता में हम काम कर जाते हैं, हम काम कर जाते हैं, कुछ एक अच्छा काम कर जाते हैं, तो उसमें देखते देखते में हमारा इनकम हो जाता है, लोन भी क्लियर हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा, आम लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्प है।
1: जी जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने में किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है,
0: बल्कि फायदे ही फायदे है, नहीं बिल्कुल नुकसान नहीं।
1: जी तो नवजर्मा जी, हमारे आज के ये कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, बल्कि मेरे पास सवाल तो आपको करने के लिए और भी कई सारे हैं, पर कुछ अन्य कार्यक्रम में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए आपने जो हमारे आकाशवाणी तवांग में आपने कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता अभियान सुने थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच के अंतर्गत गंगा नमिल हजे पीएलएफ के अंतर्गत वांगामा स्वयं सहायता समूह के पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों पर श्रीमती नोबुडेमा अध्यक्ष के साथ हुए एक भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे दोर्जी ड्रेमा।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: मिलीमीटर 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में। गीतकार है कुमार तथा संगीतिया है अमल मलिक ने।

तनिष्क बख्शी के संगीत पर आए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कपूर एंड सन से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने।

श्रोता, अभी आपने फिल्म तमाशा से मोहित चौहान की आवाज में एक गीत का आनंद लिया। इस गीत के रचयिता इरशाद कामिल तथा संगीतिया तैयार रहमान ने। आइए कार्यक्रम को यूं जारी रखते हुए सुनते हैं मनोज यादव के गीत पर फिल्म सनमरे से कार्यक्रम का अगले गीत। इस गीत के गायक है अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमल मलिक।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

क्वीन फिल्म से श्रोता व्याप ने अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाजों में एक गीत का आनंद लिया। इस गीत को बोल दिए थे अन्विता दत्त ने तथा संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, हॉलीडे फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार है इशांत कामिल तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोता, अभी आपने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से अदीब असलम की आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता थे इरशाद कामिल तथा संगीत दिया था प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म भूत पार्ट वन से अखिल सचदेवा और मशील गुजरल की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार है अखिल सचदेवा।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीतमंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आइए सुनते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन। राग है मैन की मलहर। तकलीफी संगीत दे रहे हैं शबीर खान।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन राग था मियन के मलहर। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिन्दी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के खिलाफ जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में सहयोग, नवाचार, निवेश और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा है कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर

0: और दुनिया भर में उपलब्ध है। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को आगे बढ़ावा देने और जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगी। श्री वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के दर्श सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी रहेगा। सेवा और शासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम करना होगा। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन को बदल रही है। इस अवसर पर सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित हो रही है। इसी कड़ी में आज आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
3: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
2: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी
0: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनके 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर के वाराणसी तक साइकिल रैली का रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से स्वार्थ स्पष्ट होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत आनो केची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
4: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी

0: आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24 लाख 50 हजार विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुँचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार।
1: मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 20 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति ने पुणे जिले के लोनावला में केवलिया धाम में गोवर्धन दास योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akash.

0: It is high time that we relax and look back what it means to be a human being, which differentiates from animals. Animals also have sex and produce kids. They also go after food. हम लोग वही कर रहे और क्या ज्यादा क्या कर रहे हैं एनिमल से भी ज्यादा हमारे पास इतना ग्रीड है एनिमल बेचारा कुछ खा के फिर सो जाता आराम से हमको बटोरने के लिए चाहिए और नाउ लुक एट द ह्यूमन फीचर लुक एट दिस लॉन्ग आर्म्स दिस इज फॉर हगिंग नॉट फॉर हीटिंग नॉट फॉर पुलिंग ट्राइगर्स ऑफ अ गन दिस नाइस फिंगर्स फॉर शेकिंग हैंड नॉट फॉर यूजिंग एज अ फिस्ट एंड देन लुक एट द टीथ हार्डली एनी अदर एनिमल हैव दिस टीथ एंड दिस इज फॉर स्माइलिंग एंड देन लुक एट द आईज ऑल्सो Eyes are basically more like deer, which means it's not like snakes. Snake jaisa nahi hai. Gussa hota hai, tab hota hai snake jaisa. Normally it is like more like deer, and especially mothers when they show their love to the kids, their eyes become smaller even. Mere bete bol kar aankh chota ho jaye, because love is inside, not outside. Right? Then the most important thing is language. No other animals have the language as we have. And what is the purpose of this language? This purpose of this language is not to say chai lao, khana lao, bhook lag raha, uske liye nahi hai. You can use for that also, but the purpose, this is my assumption. The purpose of language is when people live together, when different communities live together, it's possible there will be differences, there will be disagreement. At that time, use this language, instead of immediately fighting, use this language. Bolna chahiye. अब हम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी है अब बैठ के बात करते हैं कौन गलती कर रहा है सो सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन वी कैन डू दैट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टाइगर्स एंड लायंस दे कांट से वी हैव अ प्रॉब्लम लेट अस सिट डाउन एंड टॉक एंड डिस्कस बिकॉज दे डोंट हैव द लैंग्वेज सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दे जंप अपॉन ईच अदर एंड ट्राई टू टियर ईच अदर अपार्ट दैट्स अंडरस्टैंडेबल एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग दैट टुडे एंड वर्स देन द एनिमल्स वी आर यूजिंग Nuclear bombs. The world right now has over 20,000 nuclear warheads. ये पागलपन नहीं तो क्या है? अब उसको रोक भी नहीं सकता है. Because if one country tries to stop, other monster will try to take advantage of it. इतना खराब स्थिति में हम लोग पहुंच गया है. So what should we do really? Education is the key. Teach people. When there is a problem, solve it through dialogue, negotiation. In order to solve it, use your brain. Think about it. People who have used their brain in the right direction, like Buddha, Nelson Mandela, Isolde Dalai Lama, Mother Teresa, so many great teachers have visited this earth. They brought peace, happiness to the heart of millions of people.
1: The Uzuk Juche Cham Reshma Piramal Sri Kalapno Sanhansa
2: मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है नॉट बिकॉज आई हैव एनी ज्ञान टू गिव बट हम अलग तरीके से सीखते हैं एंड सम ऑफ अस लिसन बाय आई मीन हियर लिसन एंड रिटेन एंड कई जन को पिक्चर्स की जरूरत भी रहती है बिकॉज विजुअली इट हेल्प्स तो आई डोंट हैव सच प्रेशियस वर्ड्स लाइक लाख दोहरला तो आप अटेंशन पे खड़े होके सुनेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे सहायता लेनी पड़ेगी taking some images and pictures. So, I wanted to start off very briefly in talking about India's story. And I think all of us know ki the world is moving very fast. Things are developing very quickly. And I think this is an opportunity for all of us. And I'm going to talk about that opportunity. Actually, Lakh Dohla has already talked about it. Particularly, education mein. And I think one most important thing is that we owe this to the great vision of His Holiness the Dalai Lama. There's one man behind it. Because His Holiness ko sab mante hain. Yahan bhi nahi, magar pure globe mein. Aur unhone jo kiya by bringing attention to this idea of developing the heart, educating the heart, has been something that lot of individuals have taken as a way of practice. I wanted to start off by sharing this aspiration, which I share in all my trainings from the Ethics for a New Millennium. And I want to read it out because it is very, very powerful. And in fact, if everyone in this audience can read this together, it would be wonderful. My hope and wish is that one day formal education will pay attention to what I call education.

0: condition of the heart. Just as we have taken for granted the need to acquire proficiency in basic academic subjects, I am hopeful that a time will come when we can take it for granted that children will learn as part of their school curriculum the indispensability of inner values such as love, compassion, justice and forgiveness.
1: तो जैसे कहते हैं ना, जब अभिषेक मिलता है तो लुंग मिलता है और फिर वांग मिलता है. तो हिज होलीनेस ने लुंग दिया है सबको, एंड नाउ इट इज अबाउट टेकिंग ट्रांसमिटिंग दैट. तो ये ट्रांसमिशन कैसे होगा? बिकॉज वी ऑल नो दिस, वी ऑल हियर दिस, बट वी डोंट नो हाउ टू डू इट. ये कैसे लगेगा क्लासरूम में, कैसे कर सकते हैं ये? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी. आई वॉन्टेड टू जस्ट वेरी ब्रीफली शेयर विद यू कि ये सी लर्निंग करिक्यूलम जो है, क्योंकि ये विजन था हमारे गुरुजी का, और मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक देर इज अ नीड. सब लोग को ये नीड पता है, मगर कभी कभी हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते. तो गेशी लोबसंग डेंजिन नेगी जो यहाँ नहीं आ पाए, ही इज एक्चुअली इन गोइंग टू बी गोइंग इन टू रिट्रीट, एंड लाकतोर ला एंड मेनी अदर वंडरफुल इंडिविजुअल्स एक्चुअली टुक दिस इनिशिएटिव टू से कि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये विजन को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे लगेगा ये क्लासरूम में. और उससे उत्पन्न हुआ, एंड देयर वाज बोर्न द सी लर्निंग करिकुलम एट एमरी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉन्टेम्पलेटिव साइंसेज एंड कंपैशन बेस्ड एथिक्स. इसके बारे में डिटेल में हम 3 डे एड प्रेप में सीखेंगे थोड़ा बहुत इसका आउटलाइन, मगर मैं आपको थोड़ा एक दो स्लाइड में सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जब हम कहीं जाते हैं, हम गूगल मैप आजकल खोलते हैं और गूगल में टाइप करते हैं एंड वी गेट द कोऑर्डिनेट्स. सो वी वॉन्ट टू ऑल्सो लोकेट वेयर इज सी लर्निंग लोकेटेड इन दिस लार्जर फ्रेम, वेयर डज इट फिट इन. क्योंकि हमारे थाली में बहुत ही अलग अलग कटोरियां हैं, पर्टिक्युलरली फॉर टीचर्स. तो कैन वी स्टार्ट सीइंग सी लर्निंग नॉट लाइक अरे थोड़ा आप आचार लेंगे क्या, तो थोड़ा आचार डाल दिया हमारे थाली में, क्योंकि थाली तो बहुत भर चुकी है, अलग अलग कटोरिया है, सो मेनी सब्जेक्ट, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन यू एड वन थोड़ा बहुत आचार टू द थाली. सी लर्निंग इज नॉट आचार एंड इट इज नॉट अनदर कटोरी. सी लर्निंग इज द थाली. इट इज हाउ यू ग्लू एवरीथिंग टूगेदर. And that is really something that we are going to explore in the 3 days. मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा बात करूंगी एक दो मिनट में, मगर मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. And I want to also take the time to acknowledge कि इसमें बहुत लोगों का योगदान हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है इसका, ये हुआ है थ्रू एडुकेटर्स, थ्रू सोशल साइंटिस्ट, थ्रू डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, बट द हार्ट, the architecture, the heart comes from Lojong, from mind training. And I think it is important for us to realize ki iska jo family, which we talk about Buddha families, the family comes from, the heart of this comes from Lojong. I want to also say one thing, and this is a personal note, is I am a student, I consider myself a student of the Buddha Dharma, but I feel most happy to say that See learning's source comes from this wonderful land. And kai baar aise hota hai, hum proudly kehte hain ki see learning is in 52 countries globally, so many countries have taken it. Mexico has introduced it into pre-service teacher training. Ukraine before the war took see learning officially. And I sometimes think this is the source country. And in this source country, it is, I think, the wish of so many of us that this program become very much part of the fabric of education. See learning has been very beautifully designed and thought through, taking through 3 very important elements. Jaise Lakdur Laha ji ne kaha tha ki hum operate karte hain self, hamara mind rehta hai. Sab log ka mind hai, sab log jante hain ki mind hai. Yes. Today, if I think about it now, these 8 billion people, someone somewhere from these 8 billion people are having an emotion. Yes or no? But we don't know how to manage these emotions only. Magar hum sab ka mind rehta hai, and as a result, we have these emotions. So when we look at the self, we begin to realize ki hamare andar ek universe hai, jo hum jante hi nahi hai. Phir dusro ka bhi universe rehta hai.

0: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ और 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय संध्या के 6:12 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको आज की शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम जेदन लेरिम, इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे गिलोंग चंपावांगचू और साथियों द्वारा शेदन जोरवा चुरु। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिन्दी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता, इस कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे एलडी स्कूल होम के छात्र दोनुवांगमू दोंगे से अंग्रेजी में एक कविता। शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक, इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले पाएंगे जुबिन गर्ग संग अन्य गायकों के गाने, फिल्म द ट्रेन से एक गीत, फिल्म क्रिश 3 से एक गीत, नमस्ते लंदन फिल्म से एक गीत, आई सी यू फिल्म से एक गीत, बस एक फिल्म से एक गीत और फिल्म बिग ब्रदर से एक गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के टनर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर।

शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे फिल्म फना से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। रात 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत में आनंद लीजिएगा। आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्किन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 18 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजानी की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मीडिया न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कल इस कार्यक्रम में पहले आप सुन पाएंगे गाने स्मृति तथा हरिहरन संघ अन्य गायकों के गए चंद देव भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत। इस कार्यक्रम में कल आप आनंद ले पाएंगे चन आधुनिक मणिपुरी गीत। कल दोपहर 3:30 पर मेरी बात कार्यक्रम में सुन पाएंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगटिंग के कक्षा 11वीं के छात्र सुखशी पेमाल हामुस से एक वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिला पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम में कल आप आनंद ले पाएंगे फिल्म डियर जिंदगी से जशन रॉयल और अमित त्रिवेदी, जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन, फिल्म लुटेरा से मोनाली ठाकुर और फिल्म दोस्ताना से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल दिल्दानी की आवाजों में चंद नगमे। कल दोपहर 3:50 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। इस कार्यक्रम में आप आनंद ले पाएंगे फिल्म आरआरआर से विशाल मिश्रा और राहुल सिपलीगुंज, फिल्म एक में और एक तू से बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा, वेकअप सिट फिल्म से कविता से आयशा, फिल्म से निखिल डिसूसा और अमित त्रिवेदी, एंटरटेनमेंट फिल्म से अतीब असलम और शुलमली खलगड़े, लेला मजनू फिल्म से अतीब असलम और ज्योतिका तंगली, रामाय वस्तव्य फिल्म से अतीब असलम और श्रेया घोषल, फिल्म थ्री इडियट्स से शान और शांतनु मोहतरा, फिल्म जब वे मिट से उस्ताद सुल्तान खान और फिल्म किस्मत कनेक्शन से अतीब असलम और अलका याग्निक की आवाजों में चंद आधुनिक फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचनाओं मनपा में। शाम 6 बजे कार्यक्रम निर्मसेडा। 6:10 पर कार्यक्रम जरूखा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेरिम। शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रदेशी समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने। रात्रि 8 बजे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे का आनंद ले पाएंगे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में। रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:09।

तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूखा अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

尊者我们一等观者尊能者尊者无人天道人教育南京归参

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं पेश है कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आज आप सुनिए एलियट स्कूल्स होम के छात्र डुनुवामु दोंगे से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक है आइसक्रीम मैन।
1: गुड इवनिंग टू एवरीवन, माय नेम इज डुनुवामु दोंगे। आई एम फ्रॉम एलडी स्कॉलर्स होम एंड आई स्टडी इन क्लास 5। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोयम एंड माय पोयम इज आइसक्रीम मैन। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ड्रिप्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोस ट्रेकिंग डाउन द स्ट्रीट। Beneath his round umbrella, oh, what a cheerful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottle full of frosty freeze, green, orange, white, or pink. His card might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around as thick as honeybees. Thank you.
0: Shodha, abhi aapne kavita pe aadharit karyakram aaj ki kavita ke antargat एलियट स्कूल्स होम के छात्र डुनुवामु दोंगे से अंग्रेजी में एक कविता सुना। कविता का शीर्षक था आइसक्रीम मैन। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हो गए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे जुबिन गर्ग संग अन्य गायकों के गए चंद फिल्मी नगमे। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म द ट्रेन से के और जुबिन गर्ग के आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है साहिद कदरी ने तथा संगीत से संवारा है मिथुन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, समीर के रचे बोल पर फिल्म क्रिश 3 से। इस गीत के गायक अलीशा चेन्नई और जुबेन गढ़ है।

मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माय वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।

जावेद अख्तर के गीत पर श्रोता भी अपने फिल्म नमस्ते लंदन से एक गीत का आनंद लिया। इस गीत के गायक थे अलीशा चेन्नई, हिमेश रेशमिया और जुबेन गर्ल। आइए कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म बस एक पल से के और जुबेन गर्ल की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को बोल दिए हैं अमिताभ वर्मा ने तथा संगीत दिया है विवेक फिलिप ने।

श्रोता, अभी आपने फिल्म बिग ब्रदर से उस्ताद सुल्तान खान और जुबिन गर्ग की आवाजों में एक गीत सुना। इस गीत को बोल दिए थे अनिल पांडे ने तथा संगीत का संदेश शंदिलिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय फिल्म से जुबिन गर्ग और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत की रचयिता कुमार तथा संगीत यह है जीत गंगोली ने।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्यपाल की पहल पर प्रधानमंत्री के देशव्यापी आह्वान के समर्थन में राज्यपाल सचिवालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य नशे के खतरे को समाप्त करना और एक स्वस्थ, सशक्त और अधिक जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को आज से देश के सामने मौजूद सबसे गंभीर सामाजिक चुनौतियों में से एक कहा। उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए, जिसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थाएं और समुदाय साझा जिम्मेदार की भावना के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विनाशकारी प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष का स्वच्छता ही सेवा अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, जिनमें स्वच्छता लक्षित इकाइयों और स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों का रूपांतरण, स्वच्छ पाठशाला युवा फॉर स्वच्छता, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। देशव्यापी अभियान के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के मालोतारिन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए स्वच्छ पाठशाला फॉर युवा स्वच्छता का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता की आदत को विद्यालय से अपने घरों, गांवों, कार्यस्थलों और कार्यालयों तक ले जाने का आह्वान किया। शिक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने आज तवांग स्थित थुपतेन शेरडुपलिंग में SEE लर्निंग पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का आयोजन कार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य विभाग द्वारा थुपतेन शेरडुपलिंग फाउंडेशन तवांग के सहयोग से किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देना है। 3 दिवसीय कार्यशाला शिक्षकों को सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक यानी SEE लर्निंग की बेहतर समझ विकसित करने तथा करुणाशील, जिम्मेदार और मूल्य आधारित सीखने का वातावरण तैयार करने के तरीकों पर पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। पासीघाट नगर परिषद PMC ने आज पासीघाट के गोमन नगर स्थित PMC कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के साथ महीने भर चलने वाले सेवा मेरा योगदान 2026 और स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की शुरुआत की। सेवा मेरा योगदान 2026 के तहत PMC वार्ड पार्षदों, नगर निकाय के अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, युवा समूहों, बाजार संघों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निवासियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के लिए जुटाया जाएगा। इनमें पौधारोपण, सौंदर्यकरण, जागरूकता अभियान, वॉकथॉन, ब्लॉक रन तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियां भी शामिल होंगी। भारतीय दूरसंचार निकाय प्राधिकरण ट्राई द्वारा आगामी 29 सितंबर को अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दूरसंचार उपभोक्ताओं और उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों तक पहुंच बनाने में तथा हाल के समय में दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ट्राई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के 2 शिक्षक महाराष्ट्र में आयोजित DBT स्टार कॉलेज कार्यक्रम के टास्क फोर्स की समन्वय बैठक सह 7वीं समीक्षा बैठक में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रख्यात प्रोफेसर के विशेष व्याख्यान, प्रमुख स्टार कॉलेज संस्थानों के अनुभव और विचार, 31 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की प्रस्तुतियां और समीक्षा तथा कार्यरत स्टार कॉलेजों द्वारा पोस्टर प्रस्तुतियां शामिल है। अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर एम्स के सहयोग से नाहरलगन में आज डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारियों और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों के लिए मादक पदार्थ सेवन विकार यानी सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर पर 3

0: organized by Arunachal Pradesh Drug De-Addiction Society, Department of Health and Family Welfare, in association with National Drug Dependence and Treatment Center, AIIMS, New Delhi. The training is a part of human resource capitalization in fighting against drug menace in line with Nasha Mukt Bharat Abhiyan. That's all in this news headlines. Namaskar.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम देशभक्ति गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म फना से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। गीतकार प्रसून जोशी तथा संगीत यह है जतिन ललित ने।

श्रोता, अभी आपने कार्यक्रम देशभक्ति गीत में फिल्म फना से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में एक गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। तो आए श्रोताओं,

उनका पहला गीत सुनते हैं फिल्म गीता मेरा नाम से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को बोल दिए हैं राजेंद्र कृष्णन ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत की फरमाइश की है गांधी चौक बर्मर राजस्थान से बबलेश पनवर, धनी पनवर और मनीष पनवर ने।

समीर की रचे बोल पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म बागी से अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है मेहर नगर उमरखेत महाराष्ट्र से, अभिजीत गवंकर राही, मिसेस सरिता गवंकर।

प्रिंस एकांश गावंकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धार्थ गावंकर, परिणीता गावंकर, लाडला टुक टुक गावंकर और आकार हाय बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गावंकर, सुमित गावंकर और मिस दोहनी गावंकर ने।

से आए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत उमा देवी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है नौशद ने, गीत की फरमाइश की है दातारंगी भट्टापरा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा और मारवा रेडियो श्रोता संघ हिंगणी रतलम मध्य प्रदेश से, जगदीश धक्कड नेमा, रंजभाई धक्कड, युवराज सिंह धक्कड और शिवंगी धक्कड ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है हू डीएचपीडी से पासांग गोनपो नीमा दावा संगे ड्रेमा और दावा ड्रेमा ने इनकी फरमाइश का गीत है फिल्म आराधना से इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीत दिया है एसटी परमन ने

श्रोता आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एंटी फरमाइश का की फिल्म अफसाना प्यार का से अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को बोल दिए हैं समीर ने तथा संगीत दिया है बप्पी लेहरी ने। गीत की फरमाइश की है न्योमदुंग तवांग से, संगे छिरिंग, सोनम छोटन, नमगे युटन, टेंजिन गोंपा, फुरपा, कर्मा छोटन और टशी ड्रेमा ने।

रानी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के वसफर में शुक्राधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नज़्म। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वसफ शुरू के लिए

रात्रि के 8:10 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली के अनुसार प्रसारित इस कोशिश के रात्रि 8:10 पर। तत्पश्चात समाचार 8:00।

0: मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतर सईद।
1: जी हाँ, हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले हेडलाइंस।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला नई दिल्ली में जारी। अभिषेक शर्मा 30 गेंद में शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। जापान के खिलाफ किताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और डेविस कप क्वालिफायर दूसरे दौर के मुकाबले में कल भारत का सामना कोरिया से।
1: तो शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। शक्ति, इससे पहले कि हम आगे चर्चा अपनी शुरू करें, इस मैच की अब तक की ताजा अपडेट क्या है?
0: अतर, बता दें कि इस समय 12 ओवर और 5 गेंद का खेल हो चुका है और भारतीय टीम जो पहले बल्लेबाजी कर रही है उसने 164 रन स्कोर बोर्ड पे चढ़ा लिए हैं और वर्तमान में संजू सैमसन 50 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
1: यानी संजू सैमसन का अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे पहले का कमाल की बल्लेबाजी की है अभिषेक की, जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम होगी। आशक्ति, 34 गेंद में 108 रन, क्या कहते हैं?
0: कुछ कहा ही नहीं जा सकता ऐसी पारी जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए अतर। और जब मैदान में आज अभिषेक उतरे तो लोगों को लगा था कि क्या अफगानिस्तान क्लीन स्वीप के इरादे को नाकाम करेगी, लेकिन जिस तरह का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने, हर तरफ शॉट और गेंद ऐसा लग रहा था कि अभिषेक के बल्ले को छूती और सीमा रेखा के पार जाती और सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गया आज ये खिलाड़ी।
1: हालांकि ये मैच से पहले ये सोचा जा रहा था कि क्या अभिषेक आज भी कुछ कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने तो धमाल कर दिखाया आज। उनके बल्ले से एक के बाद एक गेंद जो है रन बटोर रही थी, तो वो जो दृश्य है वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। एक सवाल आपके ही शब्दों में निकलता है, क्या भारत क्लीन स्वीप कर पाएगा?
0: जी बिल्कुल, अब तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का स्कोरबोर्ड आपने 164 रन चढ़ा लिए हैं, 13 ओवर का खेल हुआ है, भारत एक बहुत विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह का डोमिनेंस इस पूरी सीरीज में अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि दिल्ली के दर्शकों को एक तीसरे मैच में जीत लगातार स्पष्ट नजर आ रही है।
1: बिल्कुल, और मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए पहले उतरी भारतीय टीम दूसरी अपनी इनिंग की जो शुरुआत करेगी वो बल्लेबाजी से करेगी, तब तक रात गहरा चुकेगी। तो क्या ये टॉस का महत्व कितना बढ़ जाता है ऐसे में, जबकि दिल्ली में मौसम का असर इस समय देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लगभग 60% से ज्यादा है और रात में ओस का जो प्रभाव है और बढ़ जाता है। शक्ति,
0: जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन अब तक अभिषेक शर्मा के उस पूरे हिट शो के आगे फैसला बिल्कुल गलत साबित होता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शुरुआत के दो मुकाबलों में भारत ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था और परिणाम भारत के पक्ष में थे। शायद ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के कप्तान के जहन में चल रहा होगा कि इस बार हमें मौका मिला है, हम गेंदबाजी करते हैं, मैच जीतेंगे, लेकिन पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है।
1: और साथ में शक्ति एक चीज और है, दिल्ली के दर्शक जो है भारतीय टीम को भा गए हैं। दिल्ली के दर्शकों के समक्ष दो लगातार जीतों के बाद तीसरी जीत के मुहाने पर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम है, उम्मीद तो यही बता रही है अब तक की बल्लेबाजी के क्लीन स्वीप की ओर भारत बढ़ रहा है।
0: जी बिल्कुल, और जिस तरह की पारी देखने को मिली, कोई मुझे अभी तक यहां से हमें दो राय नहीं नजर आती हुई और भारतीय टीम एक शानदार जीत और इसके बाद जो टीम को एशिया कप खेलना है, एशियन गेम्स खेलने हैं, उसके लिए एक शानदार अभियान की तरफ बढ़ती हुई।
1: एक अंतिम सवाल, चूंकि संजू सैमसन इस वक्त जो है पूरे फॉर्म में है, तो उनसे क्या उम्मीदें लगती हैं, क्या वो भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी खेल बचा हुआ है तकरीबन 7 ओवर का और संजू सैमसन अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, हालांकि थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे और अर्धशतक में अपना विकेट उन्हें गंवा दिया है, लेकिन एक चीज तो तय है कि भले उनका शतक नहीं हो सका लेकिन टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तर
1: बिल्कुल, आपने सही कहा और हमारी पूरी उम्मीदें, शुभकामनाएं, और साथ में ये भी है कि जो प्रदर्शन है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत निश्चित रूप से ये मुकाबला जीतने की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले सप्ताह दुबई में रिकॉर्ड 8वीं बार महिला T20 क्रिकेट एशिया कप जीतने के बाद गत विजेता और खिताब के प्रबल दावेदार भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में कल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कल क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच जापान के नागायो में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।

0: दुबई में खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन एशियाई खेलों के नॉकआउट प्रारूप में उनके पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। महिला स्पर्धा में 8 टीम भाग ले रही है और प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी टीम को प्रतियोगिता में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए ग्रुप चरण के मुकाबले नहीं मिलेंगे और एक हार ही अभियान को समाप्त करने के लिए काफी होगी। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का प्रदर्शन काफी अहम होगा। उन्होंने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें वे टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज के साथ साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिनको स्मृति मानधना का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर भी एशिया कप के औसत प्रदर्शन के बाद बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। गेंदबाजी में भारत के पास काफी विकल्प हैं। भारत की गेंदबाजी काफी हद तक अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और बाएं हाथ के स्पिनर श्रीचरणी के इर्द गिर्द रहेगी। भारत के सामने मेजबान जापान घरेलू मैदान पर मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। जापान को मजबूत भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा। उसे भारत के स्पिन विकल्पों के खिलाफ प्रभावी ढंग से खेलना होगा और साथ ही उसके गेंदबाजों को आक्रामक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को रोकना होगा। इससे पहले कल बांग्लादेश और चीन के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने के बाद ICC में बेहतर रैंक के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। स्पोर्ट्सकैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: शक्ति, भारतीय टीम से इस प्रतियोगिता में क्या उम्मीदें आपको लगती हैं?
2: जिस तरह की हालिया फॉर्म रही है हरमनप्रीत एंड आर्मी की, बिल्कुल वो स्वर्ण पदक को बचाते हुए टीम नजर आएगी। शानदार गेंदबाजी क्रम, मजबूत बल्लेबाजी और थोड़ा अगर कुछ मोर्चों पे टीम और सुधार कर लेती है तो कह सकते हैं कि जापान में भारतीय टीम पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण पदक के साथ नजर आ सकती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में हमारी नजरें किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर केंद्रित हो सकती हैं?
2: जी, अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो 1, 2, 3 नहीं, भारत के पास 4 से 5 शानदार विकल्प हैं। दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी, उसके बाद प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और अभी जब टीम एशियन कप जीत करके आई है वहां पे देखा जाए दीप्ति शर्मा सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी थी। 5 मैचों में 14 विकेट और वो शानदार स्पेल जो पहले मैच में आया था बिना कोई रन दिए, वो 4 विकेट, शायद बहुत मनोबल मिलेगा जापान से पहले इस खिलाड़ी को और उनकी मौजूदगी से इस पूरी टीम के गेंदबाजी महकमे को।
1: अच्छा, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर हरमनप्रीत कौर की ये टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन साबित हो सकते हैं?
2: बल्लेबाजी की अगर बात की जाए अतर, तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कुछ मोर्चों पर टीम को काम करने की जरूरत है। शेफाली वर्मा की शानदार फॉर्म, हालिया फॉर्म जो है उसका कोई तोड़ नहीं, सबसे अधिक रन बनाए, 5 मैच 236 रन, 3 शानदार अर्धशतक जिनको साथ मिलता है स्मृति मंधना का, तो कह सकते हैं कि ओपनिंग बहुत अच्छी है, मिडल ऑर्डर से कुछ और योगदान होगा तो टीम बिल्कुल पोडियम पे पहुंच रही है।
1: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर
2: और अब बात की जाए भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला की, जहां वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रृंखला में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ घरेलू सरजमी पर 3 एकदिवसीय और 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आइए सुनते हैं इस पर अपने सहयोगी सरफिरोजी की रिपोर्ट।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज के साथ आगामी एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल भी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। इन दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर के तौर पर नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर और रविन्द्र जडेजा को स्थान मिला है। वहीं गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज और औकिब नबी के हाथों में होगी। बोर्ड ने 5 T20 मैचों के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को T20 की कमान सौंपी गई, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन का चयन किया गया है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में स्थान मिला है। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस और मयंक यादव भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। श्रृंखला का पहला मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इस महीने की 27 तारीख को तिरुवेद्रम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच गुवाहाटी में 30 सितंबर को और अंतिम एक दिवसीय मैच चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। जबकि 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, वहीं दूसरा 9

0: अक्टूबर को रांची में, तीसरा 11 को इंदौर में, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को और दौरे का अंतिम मैच बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: साइना नेहवाल ने खेलो सानंद उत्सव 2026 का आज उद्घाटन किया। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने गुजरात के सानंद में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सानंद में सभी 105 गांवों में 18 दिवसीय ओलंपिक

0: ट्रेनिंग करते हुए देख रही हूँ, कॉम्पिटिशन के लिए रेडी होते हुए देख रही हूँ। एंड आई एक उत्सव बनाया जाता है किसी चीज का, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में। और इससे यही चीज सीखी जाती है कि आई एम श्योर कि अभी वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल के लिए टारगेट कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें यहाँ से इतने सारे प्लेयर्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा करेंगे।
1: तो अतर, जब जिलों तक खेल पहुंचता है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को पार करके जिलों कस्बों तक पहुंचता है, तो सिर्फ खेल नहीं खिलाड़ियों का मान बढ़ता है। कितने सहायक हैं इस प्रकार के मंच।
2: बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ग्रामीण अंचलों से जब खेल निकलते हैं तो जिला स्तर पर पहुंचते हैं, और जिला स्तर से निकलकर प्रदेश स्तर पर पहुंचे, राज्य स्तर पर पहुंचते हैं, और उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में वो आकर्षण का केंद्र बनते हुए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करते हैं। अब कितने ही खेलों की हम बात करें, खेलो इंडिया का अगर हम जिक्र करें, ट्राइबल गेम्स की अगर हम बात करें, युवा खेल की बात करें, तो इनमें से जो खिलाड़ी निकल करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ढेरों पदक ला रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो उनका सपना है और जो उनके प्रयास हैं, जो प्रोत्साहन है, उसके अनुरूप हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, पदक ला रहे हैं, स्वर्ण पदक ला रहे हैं और भारत का नाम निरंतर रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों को मंझने का, तराशने का एक मौका मिलता है, और तराशने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब वो पहुंचते हैं तो वो पदक भारत के लिए लाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो भारत के जो प्रदर्शन है वो मेडल टैली में साफ नजर आता है कि सात समंदर दूर तक कहीं कोई प्रतियोगिता हो, भारतीय खिलाड़ी अब सिर्फ प्रतिभाग नहीं करते, पदक के साथ लौटते हैं।
2: बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर कॉम्प्लेक्स में शनिवार से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
1: वहीं भारतीय टीम कोरिया के खिलाफ डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में कल उतरेगी, जब उसकी नजरें डेविस कप के अंतिम 8 में जगह बनाने पर होंगी, और एक बार फिर भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश से अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की उम्मीद होगी। उनका सामना कल सियोल में कोरिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुनवू क्लोन से होगा। और अतर, कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा एशियाई खेलों की भी कर ली जाए। बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, 503 खिलाड़ियों का दल है, बहुत कम समय में समझना चाहेंगे किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी।
2: कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम बात करें, आप शायद संक्षेप में करना चाहेंगे, तो पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा साक्षी चौधरी की। महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी ने बेहद कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में साक्षी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा और वो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी।
1: तो मैं साक्षी के आगे एक नाम अतर जोड़ देना चाहूंगा, अनाहत सिंह से भारत को प्रबल दावेदार हैं पदकों की। स्क्वाश खिलाड़ी हैं, 18 वर्षीय हैं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं, और मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को, सबसे कम उम्र में भारत के लिए एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी, इसके पहले 2022 में 2 कांस्य पदक भारत के लिए महज 14 वर्ष की उम्र में जीत चुकी है।
2: 2 खिलाड़ियों का और जिक्र करूंगा, अनुष्का यादव हैमर थ्रो में, और आयुष शेट्टी के हम जरूर चर्चा करेंगे, वो भी उलटफेर करने में सक्षम है।
1: जी बिल्कुल, दिग्गज खिलाड़ी हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और अतर को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और

0: अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से

0: शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को

0: आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi.